आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia.

0: தாராள பிரபு படத்துக்காக பாட்டு கேட்டோம். அனிருத் இசையமைச்சு பாடின பாட்டு.
1: இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: சிறுவாணி சாரல் நிகழ்ச்சியில் இணைஞ்சிருக்கோம். ஆகாஷ்வாணி கோயம்புத்தூர் 103 FM IRCTC அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் வெளியிட்டிருக்க ஒரு செய்தி குறிப்பு என்ன அப்படின்னா, IRCTC சார்பில் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
1: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
1: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी,
1: है ना?
2: बिल्कुल।
1: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
1: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या हैं?
2: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: जी, एक रोचक बात और जान देते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
2: जी,
1: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
2: जी,
1: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है। वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
1: जी देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
2: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
1: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
2: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
1: श्रोताओं, इससे

0: होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है
1: जी,
0: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
1: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
0: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
1: जी,
0: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
1: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
0: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले

0: ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
1: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नी और शुद्ध नी प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं, उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं की ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि

0: गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது NCERT தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: கோயில்ல கல்லமண்ணை வச்சு அமுத்தி அந்த கதவையெல்லாம் பூட்டிக்கிறத கண்ணுல பார்த்தாங்க. கண்ணுல பார்த்த உடனே

0: All India Radio 103 FM Coimbatore.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की, सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हो, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए। इंडियन
1: हाँ, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती।

0: फर्स्ट टाइम शेव होता है वहाँ पे जाके. तो
1: रैगिंग हुई थी सर आपकी
0: बहुत
1: उसके बारे में
0: याद है.
1: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप और रैगिंग तो हुई होगी.
0: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंडसाइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं हमको वो स्ट्रेंथ हमको वो ताकत हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया. वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो. और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो रगड़ा के साथ ही होती है. बेसिकली रगड़ा होता है एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स ऑफ कोर्स. वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन बीएससी एंड बीए. अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस मिलिट्री ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस. लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं वी आर बॉन्डेड सो वेल. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है. और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं. पीपल माई कोर्समेट्स हैव बीन जनरल्स ब्रिगेडियर्स बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए.
1: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है आप उसके साथ उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070. कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए. आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए एनडीए में जाइए?
0: देखिए मेरे फादर एयरफोर्स में थे
1: जी
0: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको. मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी. वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं. और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में.
1: फौज में ही जाना है
0: शुरू से ही. एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में. और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं.
1: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए. इतने सारे फौजी घर में बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहाँ.
0: उनके हस्बैंड भी थे फौज में. उन्होंने फौज के बाहर फ्रैंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने. हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली. सारा सेल्फ सफिशियंट होते हैं वहाँ पे. फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट स्विमिंग पूल योर मूवी थिएटर एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशियंट. You don't really have to go out in small little stations to the civilian area.
1: So is that a advantage or you think you miss something agar civilian area mein nahi ja rahe kuch aisa?
0: Nahin, you miss something? Koi baat nahi hai. Actually most of the cantonments or army stations are in the field areas. So field area mein to you have to be self sufficient because aapko kuch milta nahi hai itna jo aapko chahiye chahe ration ho chahe jo entertainment chahiye wo tumhare aas paas hi honi chahiye. Metro cities mein dusri baat hai.
1: Okay,
0: we have of course approach to malls and cinema halls and so on. Kabhi kabhi aate hain field mein agar aap posting kar le to agli posting most probably town mein de dete hain usko thoda rest dene ke liye.
1: Okay. मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी. जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सिटी लाइफस्टाइल अलग भाषा अलग खान पीन अलग पढ़ाई भी अलग हो गई होगी.
0: यस बिल्कुल सही बात है. ये एक एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली come to see so many places, a new place every 2 years, 3 years. And I really love that. And actually, very frankly speaking, I still love to travel because of that, perhaps in, you know, thing which I've gone through. And after a while, mere father ne socha, bhai, bahut ghumna ho gaya bachchon ko, to mujhe hostel mein dal diya, A4 school mein. Subroto Park, Delhi mein. Boarding school.
1: TAFS kehte the usse.
0: TAFS.
1: Haan. TAFS.
0: अब टैप्स हो गया.
1: पहले और मेरा एक कनेक्शन
0: है एफसीएस होता था. सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है. एनडीए की तैयारी हो गई. सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वाज. लकीली आई वेंट थ्रू द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
1: जी
0: एंड एनडीए चले गए.
1: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े. T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं. अहमदनगर में आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
0: नहीं,

0: पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
1: जी.
0: सबसे पहले. उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं.
1: ओके.
0: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है.
1: ओके.
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है. उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है.
1: ओके.
0: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजंत होते थे,
1: T-55.
0: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
1: जी.
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था. मैंने अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक. एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन्स आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड
1: वर्जन है. सर, टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना. सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
0: माय फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाज द टैंक रेजिमेंट.
1: ओके.
0: एंड आई जॉइंड अ रेजिमेंट कॉल्ड द डेक्कन हॉर्स.
1: डेक्कन हॉर्स
0: जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द प्राइवेट आर्मी ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद.
1: All right.
0: And then it went through various transformation and it became Royal Deccan Horse and then the Deccan Horse after 1947. And we had a Muslim squadron in before 1947.
1: Achha.
0: After partition, that squadron went into Pakistan in a regiment called the Province Horse.
1: Okay.
0: For quite some time, actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think. Where Robins Horse sort of became a sister regiment,
1: okay.
0: though in on the other side of the border.
1: Okay.
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK to attend the British officers who used to host
1: Ji.
0: Their fathers or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Robins Horse. So,
1: sir, quite a Deccan Horse ke saath judne ke baad wo jazba kaisa aaya kuch. वो अंदर की आपके अंदर की भावना, you want to share with us?
0: Yes, I was always a cavalry man. हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं, काली टोपी
1: जी.
0: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं, एक इन्फेंट्री होती है, एक टैंक्स होते हैं. जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते. लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है
1: जी.
0: तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं.
1: okay.
0: वो लीड करते हैं. दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट. ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज ऑफ द टैंक्स टू. इट्स अ टफ लाइफ. गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
1: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग.
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके जो पूना हाउस की अरुण खेतर पार पर
1: जी, जी.
0: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर का पोला होता है, उसमें बैठ के जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है.
1: ओके.
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी.
1: तो अच्छा.
0: हम लोग जो जवान जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे.
1: अच्छा.
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है.
1: Which is T-92?
0: T-72, T-55, okay. T-54 होते थे उसके पहले, अब T-90s. कॉम्पैक्ट टैंक, उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है.
1: उसके पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट. बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो, गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं. So you don't want to waste any time. There's a lot of ammunition space that is kept to load and reload the barrel.
1: Right. So aaj ke tanks bhi digitized ho gaye hain?
0: Sort of. So, digitized to computer to nahi hai andar. As far as I know now.
1: Dekhiye, civilian hoon, civilian wale sawal puchunga.
0: Haan ji.
1: Kya pata aapke paas ek GPS hai. Aapko apni location, apna route aap dekh rahe ho. You never know.
0: Yes, yes.
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो. इट्स मोर टुवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहे
0: हैं. रशियंस के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था, क्वाड्रात.
1: ओके.
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था
1: जी.
0: लेकिन अब तो यू नो GPS है तुम्हारे पास. इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है.
1: ओके.
0: लेकिन

0: Navigation is not a big problem now, as you know. You have even Google
1: एग्जैक्टली
0: Maps,
1: हाँ
0: you have
1: वही वही मैं
0: everything.
1: जानना चाह रहा था आपसे कि
0: So
1: पर आप सोचिए एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने सारा जो प्लान है आपका जो मिशन है वो सब कैलकुलेटेड है,
0: करेक्ट.
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, 4 टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस, सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी देखिए, ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है
1: ओके
0: कि क्या करना है, कैसे
1: जी
0: करना है, कहाँ
1: जी
0: जाना. देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में बता रहा
1: जी
0: हूँ, मैप्स इशू
1: एब्सोल्युटली
0: होते थे, ग्रिड मैप्स,
1: जी
0: और उस
1: जी
0: पर
1: जी
0: हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स
1: जी जी
0: और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए.
1: जी
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक थ्री तीन स्क्वाड्रन्स होते हैं, और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स,
1: ओके
0: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो, सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, ए ट्रुप लीडर जो
1: या
0: सबसे जूनियर होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ.
1: जी
0: दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
1: ओके
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही हैं. अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए, यहाँ पे होल्ड फायर, ये सारी होती है. जो सीओ होता है
1: अल्फा
0: वो
1: टू
0: एक
1: चार्ली
0: दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है,
1: ओके
0: ब्रिगेड कमांडर है और जीओसी के साथ, उसको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं. वो इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलती हैं,
1: ओके
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है, राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट
1: थोड़ा
0: फ्लैंक
1: स्पोर्ट्स
0: पकड़िए.
1: वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली,
0: इनफैक्ट दैट इज द
1: आपके वहां भी
0: लैंग्वेज
1: ऐसे ही
0: यूज्ड
1: होता है?
0: ऑल्सो
1: ओ
0: इन द आर्मी. मेरा
1: अच्छा
0: फ्लैंक्स आर देयर. देखिए, बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है,
1: ओके
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, सी यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में आए हैं जहाँ पर भी हैं या टैंक्स में, और यू टेल योर एयरफोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन,
1: ओके
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बींग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर, एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी. यू डोंट वॉन्ट टू फेस ए एनिमी विच इज अप एंड अबाउट एंड फ्री टू फायर एट यू.
1: शायद
0: दैट इज
1: यही
0: द जनरल.
1: गन्स जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था,
0: हाँ
1: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक
0: यस
1: छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन
0: श्योर
1: कर रहा है। आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट,
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश

0: Kumar Yadav, they will look a blank. But if you tell them you know Major Mickey Yadav, they'll all know.
1: Oh, wonderful. Real mates, huh? आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
0: Absolutely.
1: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ. आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है. आप बिजी रहते हैं, है ना?
0: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है. और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, सीन है, एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ अ पेरिस्कोप, उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को. सो इट्स अ वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक.
1: ऑलराइट. हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
0: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है.
1: ओह वाओ.
0: कॉम्बैट टीम एज ए यंग मेजर था तब मैं
1: जी,
0: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट. तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है. तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक. द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड.
1: सब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहाँ पे. बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहाँ जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हिंद की सेना जा रही है ये.
0: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है, सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का जो आर्मर्ड विंग है उसका जो तोपखाना कह दीजिए
1: जी.
0: So it has become a sort of a, yes, it is devastating, and it is, I've had a good time in my tank regiment because field firing होती है, हमारी practices होती है ranges पे, उसमें तो काफी कुछ training होती है उसपे. That is how you sort of tank warfare is operated.
1: और वो जो आपकी training है, that is a tough training. It is not like chalo yaar aao practice karte hain. No, it's like that's the real war situation.
0: Real life scenario war situations create hoti hain
1: ji
0: Rajasthan deserts mein. Aur wahan jaakar hum log practice karte hain.
1: Okay. सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं, कुछ बहुत देश प्रेम के साथ. बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से ही एक मैसेज आया है, और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है. सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ. आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू
0: नॉट नोन टू मी बट यस देयर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन. एंड अहमदनगर का जो आमट को स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
1: जी,
0: वो एक सेंट्रल पॉइंट है, मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से.
1: ओके.
0: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं.
1: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट. क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं.
0: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग. हम लोग जाते हैं
1: शिरडी के पास जो अहमदनगर है, आप उसकी बात कर रहे हैं. ऑलराइट. आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां. सर, वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग.
0: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
1: जी.
0: तो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी. एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है. मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स.
1: Okay.
0: जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग अ स्क्वाड्रन. एंड वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह. रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे. और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे. तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे.
1: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
0: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, यू नो, गदरा, यू नो, उसके जैसलमेर के आगे आसपास.
1: ओके.

0: बॉर्डर के टाइम
1: जी
0: तो वहाँ पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। सो
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के दस
0: हाँ,
1: ग्यारह
0: दो
1: बजे
0: तीन
1: हाँ
0: हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे, तो उस ज़माने में ये जहरो वगैरह इतना नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था।
1: जी
0: जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और उसको,
1: आजकल भी रखते हैं
0: हाँ
1: सर
0: रखते हैं,
1: हम
0: वो
1: लोग रखते हैं
0: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, तो कई
1: रखते हैं
0: बार खो जाते
1: पायलट्स
0: थे
1: जी
0: कि भाई कहाँ जाना है। तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, वो नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर। तो एक
1: दैट्स
0: हेलीकॉप्टर
1: फन
0: नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री, तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी
1: जी
0: चीफ का। तो उसने बोला, मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाडन हियर। तो उन्होंने बोला, आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए। तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो
1: जी
0: मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर, बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक। तो अभी
1: अच्छा
0: आपने एमिंग की बात की, तो
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: मेरे से एक चीज़ पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा? तो मैंने कहा, नहीं सर, उनको मालूम था एक चीज़ होती है एम ऑफ,
1: ओके
0: अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा, तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है
1: गॉट इट
0: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा,
1: मूविंग व्हीकल पे
0: मूविंग
1: आपको
0: व्हीकल
1: कैसे
0: पे
1: स्ट्राइक
0: कैसे
1: करना है
0: करना है।
1: या ओके
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल, एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज।
1: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला
0: हाँ, मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है। एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे।
1: जी
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी। आई
1: ओके
0: विश आई नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहाँ पर।
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे आप अभी हमें टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर
0: हाँ
1: मजबूर करते हैं कैन
0: करेक्ट,
1: वी कम बैक टू दैट
0: यस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल आल्सो।
1: जी
0: कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं, वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है, और दैट इज द ओनली वे वेर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है,
1: ओके
0: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे। तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए।
1: ओके
0: तो दैट इज एन अटेम्प्ट, उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके, और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है वहां
1: जो
0: पे।
1: कि हुआ मतलब
0: यस
1: हमने देखा
0: यस बिल्कुल
1: वहां
0: हुआ, यस
1: हमारे पीवीसी
0: यस
1: जो
0: यस
1: हैं
0: पीवीसी
1: परमवीर चक्र
0: आपके
1: से विजेता हमारे शो
0: यादव,
1: में भी आ चुके हैं
0: यस यस एब्सोल्युटली।
1: संजय कुमार
0: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है वहाँ
1: जी
0: टैंक्स का रोल
1: वहाँ
0: आता है,
1: टैंक्स का रोल होता
0: क्योंकि
1: है
0: वहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है, वहाँ पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है,
1: जी
0: तो टैंक्स लीड करते हैं वहाँ पे।
1: ओके
0: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं, तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया,
1: बट
0: दैट
1: सर
0: इज हाउ इट वर्क्स।
1: आज के टाइम में जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन टैंक जहाँ पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं हम ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स
0: यू सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है,
1: जी
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर एंड वी हैड रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स, वी सेट ऑफ मिसाइल्स विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर, द एयरक्राफ्ट शॉट देयर टारगेट्स विदाउट रियली क्रॉसिंग द बॉर्डर। इट वॉज ए टोटली डिफरेंट गेम, एंड आई वुड क्रेडिट दिस वॉर अ लॉट टू द इंडियन आर्टिलरी, बिकॉज आर्टिलरी का रोल बड़ा हैवी था इधर, दे हैव दिस लॉन्ग

0: range guns, and they were they had their own targets and they were doing it. मौका नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर में. शायद अगर वो और दो चार दिन और चलती तो आर्मोर्ड और इन्फेंट्री भी अंदर जाके फिर करना पड़ता तो वो दूसरी बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं.
1: ओके राइट सर. एक हमारे लिसनर हैं एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से लिख रहे हैं मैसेज. एंड आपको गुड इवनिंग कहते हुए कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड द कंपनी हियर. एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH-16 अहमदनगर अहिल्या नगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स बाय दैट, बट something he is written typical of Maharashtra is vanakkam, and that is something very sweet.
0: Yes,
1: somebody
0: yes,
1: known
0: yes.
1: to you?
0: Yes, no, not known to me.
1: Okay.
0: But you know, vanakkam I think is not a Maharashtrian word, perhaps a Tamil word.
1: Tamil Nadu se likh rahe hain,
0: but he has the spirit.
1: Sara kiya, jai hind, jai Maharashtra, yeah, jai Tamil Nadu, jai Bharat, and that's the spirit that we live with.
0: The
1: hai na,
0: cavalry
1: sir?
0: Regiment ko officers ko kai baar cavalier bol jate hain.
1: Okay.
0: So that is what is meant.
1: ओके सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है. और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इफ़ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी एंड इट्स लाइक
0: No, no. In entire operation Sindoor mein, yeah. all our fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage.
1: Yeah.
0: Chutti, leave was all cancelled.
1: Mm.
0: One did not know which way the war would go.
1: Okay.
0: And initial war, jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
1: Yeah.
0: The tanks and the infantry was not used, but they were operationally ready. To go in should the orders come, and they were absolutely ready to
1: okay go. Main seedhe tough questions poochta hu sir aapse, kyunki aap tank regiment aap uska ang reh chuke hain, you headed your own group. Is it become more difficult now to step into the enemy zone is modern era mein?
0: You see, dekhiye aisi baat hai ki technology jiske paas hai, I would say he is has an upper hand.
1: Superior.
0: Yes.
1: Okay.
0: So apparently the Chinese did give them a lot of technology, due to which there were some early they tried to do something here and there. Turkey intervened, gave them the drones and stuff like that.
1: Gee.
0: But we are dekhiye, technically and otherwise Pakistan is no match to the Indian Army at all, and I'm saying this on air. There's no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There's no match at all.
1: Sir, hume news on AIR ke madhyam se, hamari sarhadon ke paar, Fiji Island se lekar Brazil, Canada, Europe, African continent, Asian continent mein suna ja raha hai. That's a bold comment, a statement that you've given.
0: I meant every word of it. And knowing the Indian Army, the capabilities, yes, it has not been tested fully in operational Sindoor, but should it be repeated ever, I think it will come to light what the Indian Army means about.
1: Operation Sindoor hua afsos ki baat hai na sir, aur ek tarike se hum anniversary mana rahe hain. थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया. दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है. एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आँखों में, आह लाजवाब है सर. इसे सुनते हैं सर.
2: इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ

0: You were happy with how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता हूँ.
1: There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities, it's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology, you are saying ki yehi superiority aap bata rahe hain.
1: Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल आल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था
0: जी. दैट वाज द नियरेस्ट. बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स अ सिटी व्हिच इज बीइंग टारगेटेड. सो इट वाज डाउन, इट वाज एब्सोल्युटली शॉट डाउन. So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished. All
0: you heard that?
1: Yeah, I mean they were saying अभी Delhi पे bombarded हो गई है, ये bombardment हो गई है. I mean all false fake news.
0: सर हमारे traffic jam में फंसेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि how difficult it is to go out from here. एनीवे सर, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे.

आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको

0: जब मिकी यादव भी कहते हैं। ओके आप लोगों का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर, व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 325 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं। तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशंस होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि इसमें एयरफोर्स नेवी आर्मी हम तीनों थे कोस्ट। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप व्हाट एवर दे आर आल्सो दे यूज्ड टू प्रेडिक्ट, दे यूज्ड टू से व्हाट शुड बी डन, व्हाट वाज नॉट डन राइटली, व्हाट वाज डन राइटली, एंड वी यूज्ड टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफ कोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी यू नो लॉट ऑफ रेट्रो म्यूजिक आल्सो, इट गिव्स मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, सो आई लाइक इट, इट्स माय फेवरेट।
0: एफएम गोल्ड भी है जिसमें,
1: एफएम गोल्ड है, आई लाइक इट।
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए रेडियो तो एवर सिंस वी वर कमीशन्ड, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा एफएम तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था। हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं, तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे
0: जी।
1: वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
0: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें कौन सा गीत प्ले करें?
1: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति, नीति भल्ला।
0: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की सदस्य
1: हैं? हाँ, फ्रेंड्स हैं, में से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी।
0: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और टीन 72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द

0: यूनिफॉर्म ऑन, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको. जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का.
0: और मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर. प्लीज गो
1: अहेड. एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ. आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी.
0: ओके.
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं. तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के. तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी. उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एमिनेशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप.
0: अच्छा.
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक.
0: ओके.
1: So my mistake was that I did not ensure that there were laces in the football shoes
0: ever.
1: So that I used to always remember. And
0: but it groomed you into a good individual.
1: Yes, yes, sir? Exactly. NDA mein also आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास table manners नहीं है, they teach you other than this, they teach you things like table manners, courtesy, opening the door for the lady, table के ऊपर आप एल्बो रख के नहीं खा सकते. अगर आपके सीनियर ने आपको देख लिया
0: जी,
1: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा.
0: वो बोलेगा खाओ,
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे. तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो. कि
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है. बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट. इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
0: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स. बट यू नो, अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं.
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल. नेचर से बहुत प्यार करते हैं.
1: चला गया था
0: जी.
1: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया. वी वर द सेकंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया. एंड वी यूज्ड टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच वी स्टिल डू. कंपनी, आई डोंट नो व्हेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ.
0: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
1: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द आर्मी डेज.
0: जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना काम.
1: आर्मी डेज से. एंड इवन नाउ टुडे वी आई एम अ ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट. वी आर गोइंग फॉर अ हरकीडून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक.
0: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
1: नहीं नहीं, सिविलियंस आर ऑल्सो डिसिप्लिन्ड, दे हैव गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टुगेदर इन माय ट्रेकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स.
0: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे. आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो फौजी जैसी जिंदगी वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
1: देखिए, मेरा कहना है, जैसे पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन in the army, for even if it is for 5 years, like the short service commission. ये जो base बनता है ना, जो शुरू का, and वो जो disciplined जो base होता है, वो early days में ही हो सकता है. आप वो base 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
0: Great point.
1: You have to catch them young. And ये अगर हम base दे दें अपने youth को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि compulsory आपको 5 years या 3 years की army training करनी है, there will be a whole lot of change.

0: in the society in terms of at least discipline.
1: Yes.
0: Tells of punctuality, discipline. So things like that which the army teaches you. And I hope someday this happens.
1: Right. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी सर? आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे उन्होंने बोला टैंक को इधर करो कुछ.
0: आप जब यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में.
1: अच्छा.
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे,
1: जोर जोर से शॉटें मारते थे.
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे तो अच्छा. टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था.
1: बस
0: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोस डेज.
1: अच्छा. एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर, आप ही की प्लेलिस्ट से लिया हुआ है कुछ. sure. इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किसकी फरमाइश है ये? बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई RCC फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया, और मैं भी डॉग लवर हूँ। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर।
0: ओके।
1: माय फादर वाज अ डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया।
0: ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहें तो हम
0: बघीरा
1: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं, IPL के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे, पासेस में विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा IPL का। मैं नहीं सर, मैं देखे रहूंगा।
1: ओ वेस विवेक, यू अर्न्ड अ पास, IPL पास इफ यू आर लिसनिंग।
0: टॉप टियर होगा,
1: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास।
0: ओ, फिर तो बच गए। एनीवे सर, यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड। आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे,
1: इज
0: अ फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
1: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी,
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज।
0: वाओ।
1: एंड देन जॉइंड द एयरफोर्स।
0: हरियाणा में कहाँ से सर?
1: एक गाँव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली, अगर आपने सुना रेवाड़ी, रेवाड़ी तो सुना।
0: वहां से और भी फाइटर पायलट्स आए?
1: कोसली इज अ विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहां पे सारे ऑफिसर्स, यहां देयर इज अ ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज।
0: वाह।
1: तो
0: स्क्वाडन लीडर मनीष यादव
1: काफी हैं, एयरफोर्स के भी हैं।
0: ओके।
1: सो दैट इज हाउ दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप इन।
0: एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? Hunter उड़ाते
1: yes, yes, he's seen the 71 war, he's seen the 65 war, yes.
0: Okay. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड्स हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके?
1: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा। और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे, देखते थे हम लोग। एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स।
0: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है?
1: हाँ।
0: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट?
1: यस, आई हैव गॉट अ CPL।
0: ऑलराइट, तो हाउ कम एयरफोर्स

0: को छोड़कर नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लड़ाकू टैंक लड़ाकू विमान.
1: आई लेफ्ट द आर्मी आई वेंट अवे टू यूके.
0: ओके.
1: एंड केंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
0: वाओ. राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़े. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
1: काफी है, लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके.
0: हाँ हाँ, दिल अभी भरा नहीं. अभी सर ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत है, तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: राइट देन सर, इट वाज अ शियर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स, एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम.
0: वो बहुत जरूरी है सर. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And please look after yourself, and thank you so much.
1: Thank you.

0: जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।